0: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.
1: गलत जगह दिल लगा बैठे, चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल जमाने में, दिया जलाने लगे थे, घर जला बैठे।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: Real news, real impact. Showing you real world. CJMR 1320. CJMR 1320. The voice of the city.
1: तुसी सुन रहे हो चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो CNN टोरंटो।

0: पर 5 से 8 तक बनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: हुण होवेगी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्दियां ते गलबात। अमृतसर तो सरदार जसवीर सिंह पट्टी हुणा दे नाल। सरदार जसवीर
2: सिंह पट्टी सिनेमा 320 मीटर बैंड चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो। तुसी इस वक्त सुन रहे हो ते प्रोग्राम दे विच लो असी हुण पेश करांगे सरदार जसवीर सिंह जी पट्टी साहब नूं। परंतु उस तो पहले दस दिए कि जेकर तुसी कंबल खरीदण बारे सोच रहे हो तां इक वर्दी डील तुहानूं देण जा रहे हां। दो कंबल $100 दे ते तीजा बिल्कुल फ्री $50 दा। एक बाय टू गैट वन फ्री। 16 पीस डिनर सैट 70 वाला 35 दा। रेडियो 100 दे 5 मिलणगे। कोई 25 दा बेचदा, कोई 30 दा बेचदा, ते फिर आ लो चुको 100 दे 5। उही गुरबाणी उथों आउणी जिहड़ी 20-25 दी आउणी है, ते उही इथों आउणी है। कंफर्ट सैट $20 दा। परफ्यूम $20 दे। 3 परफ्यूम सैट $40 दा। पैनासोनिक माइक्रोवेव $79 दा। कपड़े सीधे करने वाली मशीन भाव प्रेस $20 दी ईच। बिहड़े सैट $15 दा। हनीवल दे टावर फैन $30 दा। ब्रांडेड जैकेट $15 दियां। किड्स टॉय 50% ऑफ मिलेंगे। ट्राई साइकिल बच्चिया लई मार्केट विच काफी महंगा $40 दा होवेगा। 7 पीस ग्लास विद विस्की बोटल, बोटल दे विच विस्की नहीं है, ए तुहानू मिलेगी $20 दी। टोटल तुहाडी जेकर शॉपिंग $150 दी हो जाती है तां ए तुहानू गिफ्ट सैट फ्री दिता जाएगा। 31 मेलनी मेलनी अते स्टील दे उत्ते सिकल लिक्विडेशन 905-405-5555। एंड पट्टी साहब दी गलबात नू स्पॉन्सर करनगे कैलेडन सब्जी फार्म, जिथों फ्रैश सब्जियां जिहड़ियां खेतां दे विच उहनां दियां उगदियां ने ओह तुसीं लै के आ सकदे हो। मूलियां, मिर्चा, किया, मटर, लौकी, शलगम, छोटियां मोटियां होर सब्जियां, शिमला मिर्चा तो अलावा टमाटर, लाल लाल छलियां इन्हां दे खेतां विच तैयार कीतियां जांदियां। ब्लैक ब्यूटी एग प्लांट $1 दा ईच। स्टील, सरबलो, पित्तल, तांबा, मिट्टी, हर साइज दे हर तरह दे बर्तन, फोल्डिंग बैड, नवारी पलंग, मूढ़े साइकिल, तंदूर, सरों दा साग बनिया बनाया जां मक्की दी रोटी दे नाल तुसीं लैणा चाहुंदे हो जां घर ਲਿਆ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਗਰੋਸਰੀ ਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮੇਫੀਲਡ 12050 ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਨੰਬਰ 905-840-9000। ਐਚ ਕੇ ਮੂਵਰਸ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੂਵ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੂਵ, ਲਾਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੂਵ, ਲੇਬਰ ਸਰਵਿਸ, ਜੰਕਰ ਮੂਵ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੂਵਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਸਰਵਿਸ, ਕਾਰਗੋ ਸਰਵਿਸ, ਸਟੋਰੇਜ ਸਰਵਿਸ। ਐਚ ਕੇ ਮੂਵਰਸ ਦੇ 140 ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10-22 ਹਰਮਿੰਦਰ ਹੈਰੀ ਜੀ ਨੂੰ 416-524-6604 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਏ। ਆਲਿੰਕ ਟਰੈਵਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟੂ ਦਿੱਲੀ 1-1080 ਐਂਡ ਅਕਤੂਬਰ ਐਂਡ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟੂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 1360 ਵਿਦ ਡੂ ਲਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਈ

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन 3 लोकेशंस तो सर्व कर देने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 416-213-1165।
1: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है। सड़कां तो पार्कां तक, ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक, क्राइम तो करप्शन तक। चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बनदा है। तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी कौंसलर कैंडिडेट, वार्ड 9 और 10।
2: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
3: नवरात्रि स्पेशल अनोखा अंदाज दी स्पेशल सेल लगन जा रही है। लेडीज मेंस पार्टी वेयर, ब्राइडल लहंगास, सूट्स, साड़ीज, कुर्तीज, अनस्टिच्ड सूट मटेरियल लेना होवे ते आज ही आओ। सूट्स ते ड्रेसेस कस्टमाइज भी करवा सकते हो। नवरात्रि स्पेशल घाघरा चोली जस्ट $50। मोर देन 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। मेंशन CJMR एंड गेट 20% ऑफ ऑन एवरी ड्रेस। अनोखा अंदाज 6101 मेफील्ड रोड, यूनिट 3, ग्राम। Call 905-794-4005।
4: यह टाटा आटो इलेक्ट्रिक इथे हर तरह दी कार, वैन, ट्रक अते XUV दे स्टार्टर, अल्टरनेटर अते जनरेटर तुसी रीबिल्ड करवा सकदे हो। टाटा आटो इलेक्ट्रिक स्टार्टर, अल्टरनेटर, जनरेटर रीबिल्ड करन दा चैंपियन। मिलो गढ़ शंकर वाले वीर सरदार सतनाम सिंह अते अमरीक सिंह, 38 एडिस्टोन एवेन्यू इन नॉर्थ यॉर्क। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-740-5555 416-740-5555। टाटा आटो इलेक्ट्रिक।
5: अपने दंदा दा रखो ख्याल SM सुप्रीम डेल डेंटल सेंटर दे नाल।
6: वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, विजडम टूथ, रूट कनाल, डेंचर
7: फॉर डेंटल एक्सट्रैक्शन, क्लीनिंग, गम ट्रीटमेंट एंड इम्प्लांट।
5: SM सुप्रीम डेल डेंटल सेंटर 2260 बोवेट ड्राइव ईस्ट, ब्रैम्पटन। बोवेट जिंगूसी डेंटल सेंटर 811 बोवेट ड्राइव, यूनिट 17, ब्रैम्पटन। कॉल 9057898266।
8: आओ फिर तुहानू अजिहे सुपर स्टार नाल मिलाउंदे आ जो कि होम लाइफ सुपर स्टार दे नाल काम करदे ने एज अ ब्रोकर टीम मनजीत दे मनजीत सिंह। घर खरीदना, बेचना, लिस्ट करना चाहुंदे हो तां भाउ दा सिक्का चलदा है। कम्युनिटी तो लंबे अरसे सेवा करदे आ रहे मनजीत सिंह। फोन नंबर 416-716-7653 या विजिट करो उन्हां दी वेबसाइट www.teammanjeet.ca।
9: The 2026 Brampton Municipal Election is on Monday, October 26. If you can't vote on voting day, you can vote early during advance polling. Advance polling will take place on October 9, 10, 11, 18 and 17. Voting hours are weekdays from noon to 8 p.m. and weekdays from 10 a.m. to 5 p.m. You can vote at any advance voting location in Brampton. Bring your voter notice if you received one and identification showing your name and address to vote. Didn't receive a voter notice? Bring your ID with you to vote and you can update or add your voter information in person. For voting locations, voter information and a list of candidates, visit brampton.ca/brampton votes. A message from the city of Brampton.
10: Real news, real impact, showing you real world. CJMR 1320, the voice of the city.
4: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।

बलराज, यू वोंट बिलीव मैंने रात की सुपना आया। पहले तुसी आओ, मैं फिर दसूंगी। तुसी जल्दी आओ, मैं बहुत सारी गल्ला करनी है। ओके।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: This is CJMR, the voice of the city, part of White Oaks Communications Group, your trusted local radio provider for more than 70 years.

0: तेरा तो सिस्टम हिल गया, तेरा सिस्टम हिल गया, तेरा तो सिस्टम हिल गया।
1: Your voice, your community, your culture. This is CJMR 1320, the voice of the city.

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: CM तो वध गुड़िए

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320 शेर दल्ला कर दे।

0: This is CJMR, the voice of the city, part of White Oaks Communications Group, your trusted local radio provider for more than 70 years.
1: चावला एंटरटेनमेंट बड़े मान दे नाल पेश करदे ने सत समुंदरों पार अपनी बोली अपना विरसा अते अपने सभ्याचार नूं समर्पित रेडियो प्रोग्राम रंगला पंजाब।

0: नवंबर 5 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रास के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है, सड़कां तो पार्कां तक, ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक, क्राइम तो करप्शन तक। चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बनता है। तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी कौंसलर कैंडिडेट, वार्ड 9 एंड 10।
2: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
3: वाह गिल साहब, ऑफिस टाइम ते काम दे विच एनी क्रिएटिविटी, उपरों एनी सारी एनर्जी, ना इस हेल्दी हेल्थ दा राज की है?
4: ओ यार काव्या, होमो केयर, होम्योपैथी फॉर बेटर हेल्थ।
5: जी कर तुसी अपनी बीमारी दे हल किसी होर पैथी नाल ना कर पाए होवो, ता एक बार होम्योपैथी दे माहर गीता ओजा नाल जरूर कंसल्ट करो। बीमारी पावे कोई भी होवे, कॉल करो
3: 6477602779 और विजिट 10 कॉटरेल बुलेवार्ड, यूनिट 104, ब्रैम्पटन।
6: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਰਡ 9 ਤੇ 10 ਤੋਂ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ।
7: ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਰਡ 9 ਤੇ 10 ਤੋਂ। ਮੈਂ ਅਰਬਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਕਤੂਬਰ

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए। मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
1: बेड, डाइनिंग टेबल, सोफा, कर ले लेना या देना तोहफा।
2: हाई एंड डिजाइन एंड क्वालिटी यानी हाई पॉइंट फर्नीचर, कस्टम मेड, कनेडियन मेड इम्पोर्टेड फर्नीचर ले आज ही विजिट करो हाई पॉइंट फर्नीचर,
1: 7550 किम्बल स्ट्रीट, मिसिसागा। कॉल 6473825500।
3: वाह गिल साहब, ऑफिस टाइम ते काम दे विच एनी क्रिएटिविटी, उपरों एनी सारी एनर्जी, ना इस हेल्दी हेल्थ दा राज की है।
4: ओ यार काव्या, होमो केयर होम्योपैथी फॉर बेटर हेल्थ।
5: जी कर तुसी अपनी बीमारी दे हल किसी होर पैथी नाल ना कर पाए होवो, ता एक बार होम्योपैथी दे माहर मीता ओजा नाल जरूर कंसल्ट करो। बीमारी पावे कोई भी होवे, कॉल करो
6: 6477602779 और विजिट 10 कॉटरेल बुलेवार्ड, यूनिट 104, ब्रैम्पटन।
7: मैं हरसिमरन सिंह, साडा शहर ब्रैम्पटन वध रहा है, पर की साडियां सेवावां भी उसे रफ्तार नाल वध रही ने। पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल रोड्स, पानी अते सुरक्षा सेवावां लई तुहाडी आवाज रीजन तक पहुंचाउणा मेरी तरजीह है। वार्ड 9 अते 10 तों आई एम कैंडिडेट फॉर रीजनल काउंसलर, आउण वाली 26 अक्टूबर नूं वोट फॉर चेंज, वोट हरसिमरन सिंह।
8: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।
9: इस हॉलिडे सीजन अपनी हर पार्टी के लिए लव साथ को अपना साथी बनाओ।

0: नॉर्थ साउथ से केटरिंग करवाओ और ऑथेंटिक साउथ इंडियन फ्लेवरफुल डिशेस का मजा उठाओ। इडली, करी, सांबर, उत्पम, डेजर्ट्स और बहुत कुछ। विजिट lovesouth.ca। लव साउथ।
1: अगर थोड़े बेसमेंट दे विच पानी दी लीकेज हो रही है, तुसी उस तो छुटकारा पाना चाहते हो, तो इको एक नाम नु याद रखना। पिछले 25 सालों तो कम्युनिटी दे विच मन्या पर मन्या नाम बेस्ट रेनोवेशन दे सतविंदर सिंह। 416-451-4565। 25 साल दी दिन देने नाल वारंटी। 416-451-4565 ते कॉल करो ते हमेशा हमेशा ली पानी दी लीकेज तो पाओ छुटकारा।
2: वाह भाभी जी मुबारक, तुहाडा घर ते बहुत शानदार है। कारपेट्स, वुडन, सब कमाल दे ने। लगदा है काफी खर्चा कीता है।
3: ए कमाल है जी, GTA फ्लोरिंग दा अफोर्डेबल प्राइस ते क्वालिटी दा समान। वड्डे शोरूम ते आओ, हार्डवुड कारपेट, लैमिनेट, टाइल्स दी खूबसूरत लार्ज वैरायटी पाओ। कॉल करो नव बराड़ नू 905-605-6805 905-605-6605।
4: GTA फ्लोरिंग कैनेडा।
5: GTA फ्लोरिंग कैनेडा।
6: मेरी हाथों मिनोनो चूड़िया है।
7: आज ते जान नालो ज्यादा तू सोनी लग रही है।
8: तुसी भी आओ, अपनी खूबसूरती नु सजाओ स्कारब्रो टेक्सटाइल नाल।
7: पाओ सूट्स, साड़ीज, लहंगास, ज्वेलरी अते फैशन एक्सेसरीज,
8: ब्यूटीफुल ज्वेलरी एंड मच मोर।
7: आज ही पहुँचो
8: स्कारब्रो टेक्सटाइल, 2659 इस्लिंगटन एवेन्यू एट एलबीएन। कॉल 416-742-0010 416-742-0010।
9: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार। योर सिटी, योर वॉइस, योर रेडियो स्टार। आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320।
10: You're listening to CNN Toronto, Chawla News Network Toronto।